और अल्लाह ने उसके हाथ में एक गाइडिंग फैक्टर दिया है, वो नूर जिसको कहते हैं, जो पब्लिक के सामने जब जाता है तो उसी गाइडिंग लाइट से जाता है। जिस तरह से अंधेरा जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, टॉर्च लगा देते हैं। पहले टॉर्च था, आज फोन ही में टॉर्च आ गया, यानी अंधेरे से बचने के लिए हमारे पास रोशनी है। कुरान ये कहता है कि तुम्हारे पास रोशनी है, वो रोशनी काहे की है, वो ईमान की रोशनी है। चुनाचे आज मगरिब में रहने वाले बच्चे जब माँ बाप के पास साथ जाते हैं ग्रोसरी स्टोर को, हर एक पैकेज को देखते हैं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, कहीं हराम इंग्रेडिएंट्स तो नहीं है, तो ये क्या है, ये लाइट है। तो अगर इंसान इसको ज़रा सा एलाबरेट करे तो आँखों को बचा के चले, कानों को बचा के चले, ज़बान को बचा के चले, ये सब गाइडलाइंस हैं। इस्लाम ने नहीं कहा कि हर चीज़ देख लो, उसी को देखना है जो हलाल है, हर चीज़ सुन लो उसी को सुनना है जिसको जो हलाल है, और वही बोलना है जो सही बोलना है। अगर दीन की ये रहनुमाई को समझ जाएंगे तो पता चलेगा कि दीन ने हर एक एस्पेक्ट को ओपनली इतना चैलेंज के साथ बयान किया है, मा फर्रत न फिल किताब मिन शै, अल्लाहुम्मा सल अला मुहम्मद। एक ना शुद्ध दो शुद्ध से शुद्ध इंशाल्लाह, सलाम अलैकुम इंशाल्लाह, दुरूद पढ़े मोहम्मद मोहम्मद। इमाम ने चार कनेक्शंस को बताया है, एक है मामला मा अल्लाह, मामला मा नफ्स, मामला मा अल-खल्क और मामला मा दुनिया। ये हमारे टॉपिक से बिल्कुल करीब है जिसे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। इंटरैक्शन विद अल्लाह, इंटरैक्शन विद द सेल्फ, इंटरैक्शन विद द मखलूक पब्लिक, उसके बाद इंटरैक्शन विद दुनिया, दिस दुनिया। ये चार ही इंटर, ज़रा सा जितना गौर करेंगे इससे ज़्यादा इंटरैक्शंस नहीं है। चूँकि हम मोमिन हैं, बिलीव करते हैं देर इज़ अ गॉड, इसीलिए कनेक्शन बिटवीन मी एंड अल्लाह किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसकी गाइडेंस कुरान ने भी बता दिया है, उसको डिस्क्राइब अहले बैत ने भी किया है, और उसी तरह से किस तरह से मेरा कनेक्शन मेरे नफ्स से होना चाहिए कुरान ने भी बता दिया है, अहले बैत ने भी उसको बहुत क्लियर गाइडलाइंस बता दिया। मेरा राबेता मेरी मखलूक से, यानी मेरे यानी फेलो ह्यूमन बीइंग से किस तरह से होना चाहिए वो भी बता दिया। वो आज हम, चूँकि आज मीलाद इमाम मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की रात है, मैं चाहता हूँ चंद जुमले इमाम से मुतालिक भी बयान करूँ। कल सात सफ़र हैं इमाम की विलादत मूसी काज़िम अलैहिस्सलाम की, बाबुल हवाइज की 7 सफ़र को है। अल्लाहुम्म सल्लल्लाहु 128 हिजरा में आपकी विलादत है, और 7 सफ़र और शहादत 15 या 25 शवाल 183-55 ईयर्स की सिन में आपकी शहादत हुई है, 20 साल के सिन में आपकी इमामत शुरू हुई है, और 35 ईयर्स ही वाज एन इमाम। ये मख्तसर सी तारीख है। एक सवाल उमूमन हमसे पूछा जाता है, और अच्छी चीज़ ये है कि बहुत से बरादरान इस्लामी भी सुनते हैं मजालिस को, और हमारी कोशिश ये रही है कि जो भी सुने नफ़रतों से ना सुने, रिसर्च से सुने, मोहब्बत से सुने। इस्लाम ने कभी इजाज़त नहीं दी है किसी इंसान को भी टर्न डाउन कर दे, हक नहीं दिया है। इसी सूरह अनआम की 108वां आयत है, वला तसुब्बुल्लज़ीना यदउना मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बगैर इल्म, किसी भी गैर खुदा के मानने वाले को बुरा मत बोलो, अगर बोलोगे तो पलट कर वो तुम्हारे अल्लाह को बुरा बोलेगा। खुला हुक्म है, यानी ये नहीं कि हदीस है सच्ची है या नहीं है, कुरान का खुला हुक्म है, किसी कौम को कंडेम करने का हक हम नहीं है। इसीलिए रहबर शहीद उम्मत ने ब्लंट जो फतवा दिया था
वो फतवा यही था कि किसी मजहब के रहनुमा

बुरा कहना हराम है। इस जुरात ने बहुत से बरादरान अहले सुन्नत को बताया कि तरबियत अहले बैत क्या है। सलवात पढ़िए मोहम्मद। क्वेश्चन ये होता है कि जब कुरान कह रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आयत कुरान है, मुझसे मुनाजरा हुआ था 30 साल पहले कनाडा में टोरंटो में हमारे कादियानी भाइयों के साथ, वही था कि आया नबुवत खातमुन नबीयीन को हम कैसे कुरान से साबित कर सकते हैं। ये आयत खुली आयत है, मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबीयीन, ही इज द सील ऑफ द प्रॉफिट, लास्ट प्रॉफिट। जब कुरान ने कह दिया है कि लास्ट प्रॉफिट है, फिर इमामत की ज़रूरत क्या है? एक ऑब्वियस क्वेश्चन जो होता है उमूमन, जब नबी आखिरी आ गया फिर इमाम की क्या ज़रूरत है? जब हिस्ट्री हम उठाकर देखते हैं तो हिस्ट्री में सरकार के जाने के बाद ये डिस्प्यूट नहीं था कि कोई लीडर की ज़रूरत नहीं है। सब लोग कहते थे कि होना चाहिए लीडर, सवाल ये था कि वो लीडर हम लोग बना लें या कि बना हुआ पहले से मौजूद है। ये दो क्लैशेस ऑफ यानी आइडियोलॉजीज रही हैं, अभी भी रहेंगी, आइंदा भी रहेंगे। इसका ख़त्म करने का वाहिद तरीक़ा है कुरान मजीद। कुरान को हम लोग अगर सालिस करार दें, कुरान ने हर चीज़ की मिसाल दे दी है, हर चीज़ के एग्ज़ाम्पल के ज़रिए समझा दिया है, कोई चीज़ अंधेरे में नहीं रखा है कुरान ने। लक़द सर्रफ वलक़द सर्रफ़ना लिन्नास फ़ी हाज़ल कुरान मिन कुल मसल, हमने इस कुरान में हर एक तरह की मिसाल दे दी है, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं और डिस्प्यूट करने की भी ज़रूरत नहीं। कुरान 2+3=5, इसमें ना 4 हो सकता ना 6 हो सकता। ज़रा सा हम लोगों की गलती यही है कि हम सुन्नियों को शिया निगाह से देखते हैं, शियों को सुन्नी निगाह से देखते हैं। ना क्लियर आइनक पहन लीजिए, ना सुन्नी रहिए ना शिया रहिए, प्योर मुस्लिम बन जाइए, हर चीज़ नजर आ जाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। और दो फिरकों को जमा कर देने का नाम ये नहीं है कि नमाज पढ़ो तो एक हाथ यूँ खुला रखो एक बांधो, ऐसा नहीं है। इत्तेहाद के माना है, तुम्हारी आइडियोलॉजी है रखो वैसे ही, हमारी आइडियोलॉजी ऐसी है रखो वैसे ही, हमारा गोल एक है हमारा दुश्मन एक है, अगर उस पर जा 90% चीज़ें कॉमन ग्राउंड है हमारे पास सुन्नी शिया में, 90% चीज़ें क़िबला से लेकर कुरान से लेकर रसूल अकरम से लेकर आप पढ़ते चले जाइए, नमाज रोज़ा हज ज़कात मसाइल में जिस तरह से मराज में फ़र्क है, इनमें फ़िक में भी ये फ़र्क है, तो फ़र्क बहुत कम है। इसको बाकायदा दिया गया है, हवा दी गई दुश्मनों की तरफ से। अभी इस जंग ने साबित किया मालूम है कि मोसाद का एजेंट बल्कि हेड ऑफ द मोसाद ने कहा 76 ईयर्स हमने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए सुन्नी शिया को बांटने के लिए, इस जंग ने मिला दिया। यानी 76 ईयर्स तो पता चला दुश्मन के चेहरे को नोचे तक नोचे बगैर, उनके चेहरे से नकाब नोचे बगैर असली चेहरा नज़र आता नहीं है। जब दुश्मन नज़र आ जाता है अपना दोस्त कौन है मालूम हो जाता। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। व्हाई डू वी नीड एन इमाम व्हेन वी हैव द लास्ट प्रॉफिट, ये सवाल जो है अमूमन होता है। और हम ये समझ रहे हैं कि हम लोग AI जनरेशन हैं, बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ हमारी अक्ल हो गई है, ये सवालात हमारे जहनों में आ रहे हैं ना। ये सवालात उस वक्त भी थे जब आप नहीं थे, हमारे दादा नहीं थे, परदादा नहीं थे, इंसान के जहन में ये सवालात आते रहे हैं हर दौर में। 5वें इमाम के पास अलैहिस्सलाम के पास अज्जल फराज अबू बसीर ने सवाल किया, मौला लोग सवाल करते हैं। अबू बसीर एक ऐसे साहबी हैं जो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं, बहुत से अहादीस उनसे हमारे पास तक पहुँचे हैं।

दो इमामों से उनका राबता रहा है, पांचों और छठे इमाम के पास। और इमाम से सवाल किया, मौला हमसे ही पूछा जाता है कि नबूवत जब आखिरी है तो फिर इमामत की क्या ज़रूरत है, और इमामत का जिक्र कुरान में कहाँ है। सबसे अहम सवाल सब हम सब के लिए जवानों के लिए रिसर्च करने की बात है कि जब तक कि कुरान ना कहे हम किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। फर्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज कुरान मजीद। इमाम से पूछा कि कहाँ पर इमामत है कुरान में, इमाम ने फरमाया वही है जो हम नमाज है। अब कैसे भाई ये कहाँ नमाज है? अब आइए आपको बता दूँ, सिंपल सी लॉजिक है, कोई ऐसी पेचीदा नहीं है। फज्र की दो रकात कुरान में नहीं है, जहर की चार रकात कुरान में नहीं है, असर की चार रकात कुरान में नहीं है, मगरिब की तीन रकात कुरान में नहीं है, ईशा की चार रकात कुरान में नहीं है, नाफिला शब यानी तहज्जुद की नमाज 11 रकात कुरान में नहीं है। नाफिला कहाँ है? तहज्जुद की नमाज पढ़ो कितने रकात? नहीं है। रोज़ाना नाफिला फज्र की दो रकात, जहर की 8 रकात, ये तमाम कुरान में मौजूद नहीं है। किसने बताया? फिर कुरान से पूछे। सूरह नहल कुरान का 16वां सूरा है, 44 आयत है, बहुत ही खूबसूरत आयत है, बहुत खूबसूरत। इन्ना अनज़लना इलैकल किताब लितुबय्यिना लिन्नासि मा नुज़्ज़िला इलैहिम। ए सरकार, आप पर जो है हम कुरान नाजिल कर रहे हैं, इनके पल्ले पढ़ने वाली नहीं है, हम आपको एक जामे एक कंसाइस बुक दे रहे हैं, आप इसको एलाबरेट करें। नौजवानों को समझाने के लिए मैं अमूमन ये मिसाल देता हूँ, एक है थ्योरेटिकल रिलीजन, एक है प्रैक्टिकल रिलीजन। हम जब हाई स्कूल में साइंस पढ़ते थे, हमारा अच्छा टीचर था और बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल देता था, रेन कैसे होती है, बारिश कैसे होती है। तो उसने कहा कि मैं बताता हूँ आपको, केतली में उसने आइस डाला और नीचे से चराग जलाया, और जैसे ही केतली के नीचे चराग जला तो आहिस्ता आहिस्ता पत्रे गिरने लगे। बोले ये जो रेन है ऊपर पानी नहीं है जी, ये बुखारात की वजह से जाता है, ऊपर जा कर के बादल की सूरत में हो जाता है। जब कोल्ड एंड हॉट वेदर मिलते हैं तो बारिश होती है। यहाँ पर एक अखलाकी जुमला मैं पहले भी कहता हूँ, ऊपर से कुछ आता जाता नहीं है, ऊपर से कुछ आता जाता नहीं है, जो भेजोगे वही आएगा। अगर एसिड भेजोगे तो एसिड आएगा, अगर अच्छी बातें भेजोगे तो मुझे एक फजाइल का रुख आ गया। सरकार आपने क्या भेज दिया कि कुरान आ गया। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो क्या है ये थ्योरी और एक प्रैक्टिकल। कुरान ने थ्योरीज बयान किए हैं, प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन जो है सरकार ने किया है। नमाज का हुक्म डिटेल नहीं है कुरान में, सरकार ने बताया डिटेल नमाज की यह है। रोज़े का हुक्म डिटेल कुरान में नहीं है, डिटेल कहाँ मिलेगी? सरकार की सीरत में। इसीलिए कुरान ने कहा सूरह अहज़ाब की 21वीं आयत हमेशा सुनते ही रहते हैं, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इन द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट देयर इज़ ए गुड एग्जांपल। अगर आप कुरान के साथ उनकी एग्जांपल को देखेंगे तो आपको इस्लाम मिलता चले जाएगा। तो इस्लाम दो हिस्सों में हो गया, एक कुरान, दूसरी प्रैक्टिस ऑफ दी प्रॉफिट, यानी एक्शन और कुरान, ये दोनों मिलाने के बाद इस्लाम बना। कुरान में नमाज की डिटेल नहीं है, रोज़े की डिटेल नहीं है, ज़कात की डिटेल नहीं है, हज की डिटेल नहीं है, जहाद की डिटेल नहीं है। सरकार ने शरीयत के हर अहकाम को डिटेल समझाया। उसी तरह से इमामत के सिलसिले में कुरान ने कहा बल्लिग मा उन्ज़िला इलैक, सरकार ने कायनात के सरकार ने 124,000 मजमे में धूप चिलचिलाती धूप में अली को उठा के कहा मन कुन तो मौला फहाज। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जेल फरज, ये सिंपल सी हमारी लॉजिक है, इसमें सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप रहें, हम ही रहेंगे, लेकिन हम दोनों का हदफ मकसद जो है अल्लाह की तरफ रुख करना है, उस तक पहुंचना है। जो ईजीएस्ट वे है उसको अपनाया जाता है। आजकल क्या करते हैं हम लोग, जब कभी जाना पहले जाना होता था तो हमको लैंडमार्क की तलाश होती थी। अब जब डैशबोर्ड पर या राइट करो या लेफ्ट करो,

0: करो, अब वो कोई चक्कर नहीं है। अब जो है आपने जीपीएस रखा, पहला पूछता है स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद था डेस्टिनेशन। स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन जैसे लगा दिया, उसके बाद कहता है राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट। अरे अभी क्या गलती नहीं करता गन्ना, ये क्या इंटरेस्ट है हमारा उसको, यही तो जितना तुम इस्तेमाल करते हो उतना उनको फायदा होता है, इनमें इंटरेस्ट मौजूद है। जब एक जीपीएस का इंटरेस्ट मौजूद है, खालिक जिसने पैदा किया है, क्या इंसान को ऐसे ही छोड़ देगा? उससे कहा कि स्टार्टिंग पॉइंट भी तुम्हारा देखो, एंड पॉइंटिंग देखो, वो क्या है, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले
1: मोहम्मद।
0: अजल फरज, बहुत ही लॉजिकल दीन है, इस दीन को कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी को तंग करने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी को हेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। मोहब्बत के ज़रिए से इंसान अपने पयामात को दे सकता है। उम्मीद है इमाम बाबुल हवाइज मुसब्ब ने जाफर चार ज़वात मुक़दसात को बाबुल हवाइज का लक़ब दिया गया है, उनमें से जनाब हज़रत अब्बास इमाम नहीं थे। अल्लाहुम्मा सल्लि दूसरे हैं उम्मुल बनी, जनाब उम्मुल बनी मादर हज़रत अब्बास। तीसरे हज़रत अली असगर, और चौथे जो है अल्लाहुम्मा सल्लि चौथे इमाम मौसी काजिम अलैहि सलातु वसलाम। आज बाबुल हवाइज की विलादत की रात है, उम्मीद है कि हम लोग यहाँ से कुछ लेके चलें। अल्लाह ताला इस विलादत के बायस हमारी अफकार को दुरुस्त कर दे, इंशाअल्लाह हम लोग दीन पर ऐसे ही चलें जैसे अल्लाह चाहता है, इसलिए कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, अल्लाह चाहता है कि हम सही रास्ते पर बाकी रहें। इमाम की ज़िंदगी में बाबुल हवाइज क्यों कहा गया, ये भी मैं अनफॉर्चुनेट केस ये है कि दुआएं जितना ज़खीरा मकतब अहले बैत में है किसी के पास नहीं है। मैंने बहुत रिसर्च करने के बाद असेस किया है, मैंने कम से कम 300 दुआएं मासूरा इमाम की हैं। 300 मासूरा के माने प्रिस्क्राइब बाय दी मासूम, इमाम इमाम की तरफ से दी गई हैं, मासूम की तरफ सरकार की तरफ से दी गई, अहले बैत की तरफ से दी गई कम से कम 300 दुआएं। और उन दुआओं के मजमू जैसे सहीफ़े कामिला में 54 दुआएं हैं, उससे हटकर बहुत सी दुआएं इमाम सज्जाद की हैं। उसी तरह से ये किताब छपी है बाबुल हवाइज यानी मुसब बिन जाफर की, इमाम काज़िम अलैहिस्सलाम की। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। उसका नाम भी है सईफ़े कादमिया। तो अगर हम ऊपर से लेकर नीचे 12 इमामों तक की दुआओं को जमा करें, कम से कम इन्हें बहुत ही कंजर्वेटिव फिगर बता रहा हूँ, 300 दुआएं मासूरा मौजूद हैं। इतनी दुआएं रहने के बाद फिर हमें किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बताया था दुआ मुनाजात नमाजें ज़ियारत इन सब का ताल्लुक प्रेजेंट डे से है, प्रेजेंट लाइफ से है। यानी दुआ दुआ उसी वक्त है जब मैं कर रहा हूँ। तो हमारा टॉपिक भी क्या है, यानी टुडेज आज का दिन क्या हो रहा है, इस दिन को कहते हैं दुआ। अगर ना करूँ तो वो दुआ कभी सामने आने वाली नहीं है। तो ये दुआएं हमें सिखाती हैं लाइफ को किस तरह से हमें गुजारना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले
1: मोहम्मद।
0: इमाम की दुआओं में इमाम को जो बाबुल हवाइज कहा गया उसकी वजह क्या, बहुत से जवाब दिए गए। इमाम के पास सुररों बाबुल हवाइज, सुरर कहते हैं थैलियाँ, छोटी छोटी थैलियाँ होती थी जिसमें जवाहरात होते, जिसमें सोने की कॉइन्स होते थे, जिसको दिरहम और दिनार कहा जाता है। दिरहम जो है चांदी के हैं, दिनार जो है सोने के हैं। इमाम जो है हर एक की हाजत के अतबार से जिसको जो ज़रूरत है वो सुरर देते थे, इसीलिए उनको बाबुल हवाइज कहा गया। किसी को भी खाली उस दरबार से जाने नहीं दिया। इंशाल्लाह आज भी आप लोग खाली मत जाइए, हमें दौलत नहीं चाहिए, हिदायत हक चाहिए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।

आते जाते थे, चंद दिनों के बाद पूरा दुकान भर गया बगैर सरमाए के। तो ये है हिकमत अमलिय इमामत। सलावत पढ़िए मोहम्मद अल्लाह आजिल फरज। मैं जब इनकलाब को जब एनालाइज करता हूँ आज के दौर में, इस दौर में इज इट पॉसिबल कि इस फास्ट दौर में, इस पावरफुल दौर में एक छोटा सा कंट्री जो कंपेयर किया जाए तो शायद हाफ ऑफ क्वार्टर ऑफ अमेरिका नहीं है ईरान। ये है, आपको मालूम है अमेरिका इज़ अ ह्यूज कॉन्टिनेंट फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। आपको अगर 5 to 6 hours प्लेन जाती है तो पहुँच पाते हैं। अगर बॉर्डर दें कनाडा से बॉर्डर है मोर देन 3 to 4 thousand बॉर्डर, ये किलोमीटर्स ऑफ बॉर्डर, बहुत बड़ा है अमेरिका। अगर कंपेयर करें ईरान को, बहुत छोटी सी जगह है, और कुव्वत के एतबार से कंपेयर करें कुछ भी नहीं है। और एक शख्स जिसके पास कुछ भी नहीं है वो जो है उस कुव्वत को ललकार रहा है। क्या माने ये सिर्फ ये बेकार की चीज़ें हैं? ना, कुरान ने कहा है जिसके पास अल्लाह है उससे बढ़कर कोई कुव्वत मौजूद नहीं है। छोटी सी मिसाल दूंगा बहुत अच्छी तरह से, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अगर हमारी किसी एमपी से दोस्ती हो जाए जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, खुद एमपी बने फिरते हैं, हैं? सिर्फ दोस्ती हो जाए किसी एमपी से, खुद हम क्या करते हैं, बिल्कुल महसूस करते हैं कि पावर है हमारे पास। और एमपी को उलट दीजिए क्या होगा, पीएम से, पीएम से अगर किसी की दोस्ती हो जाए तो फिर क्या कहेंगे। अल्लाह जो सुबह से शाम तक 5 मरतबा उसको दोस्त बना ले, वो कौन है? तूले जो लैला फिल नहार व तूले जो नहार फिल लैल व तुखरिजुल हय्या मिनल मय्यत व तुखरिजुल मय्यत मिनल हय्य व तरज़ुक मय्यत मशा बगैर हिसाब तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़ुल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़ु मन तशा व तुज़िल्लु। जब कुरान ऐसे मजाक कर रहा है ना, तो उससे मरबूत हो जा, जब उसकी कुव्वत से मरबूत हो जा तो सारी कुव्वतें छोटी नजर आती हैं। इसके माने नहीं कि तुमको काम नहीं करना है, मरबूत होने के बाद तुमको तैयारी भी करना है। 47 years इतनी तैयारी की, आज सब लोग परेशान हैं मौलाना क्या होगा। यकीन कर लीजिए, मेंबर पे कह रहा हूँ, इस वक्त कह रहा हूँ, बाबुल हवाइज के सदक़े में कामयाब होगा तो यह हक कामयाब होगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले, इसलिए कि वादा परवरदिगार सूरह हज की आयत 40 आयत है, उसका आखिरी टुकड़ा है वला यंसुरन्नल्लाह। ये अरबी कायदा है, मौलाना उलमा ने तशरीह फरमाया, यहाँ पर लाम ताकीद नून ताकीद सकीला, फशोर फशोर फशोर फशोर। जो लोग दी अल्लाह की मदद करेगा, अल्लाह उसकी मदद करेगा। और एक जो आयत हमेशा से सुनते हैं सूरह सरकार के नाम से, जो सूरह 47 सूरह, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह की मदद करो अल्लाह तुम्हारी मदद करो। अल्लाह की मदद, अरे भाई अल्लाह की मदद, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु, मैं अल्लाह की मदद। सारे सुन्नी शिया सारे मुफस्सरीन, अल्लाह की मदद नहीं है, अल्लाह के दीन की मदद करोगे अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज 57 कंट्री में एक ही खड़ा हुआ है जो दीने परवरदिगार की मदद कर रहा है। अल्लाह का वायदा है कि मैं तेरी मदद करूँगा। सलावत पढ़िए मोहम्मद जेल फरज। हम आज लाख कोशिश कर रहे हैं कि आप जो है ख़त्म कर देंगे, बमबारी कर देंगे। एक सवाल होता है कि अगर जी न्यूक्लियर बम डाल दें तो क्या होगा, उनके अब्बा भी नहीं डाल सकते। इसलिए कि ये गीदड़ भपकियां कभी चलने वाली नहीं है। आज कोई भी मुल्क, जितने भी ममालिक हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, वो दे डेयर टू यूज दिस न्यूक्लियर पावर। क्यों? इसलिए कि जिस वक्त यूज करेंगे उसी वक्त पूरी दुनिया भस्म हो जाएगी, ये खत्म हो जाएगी। कोई बेवकूफ़ी हो, फिर काय के लिए बनाया गया, डराने के बनाया गया कि हमारे पास इतना पावर है तुम सरेंडर हो जाओ।
ईरान ने कहा हम सरेंडर होने वालों में से नहीं है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर पावर है, हमारे पास एक ऐसा पावर है जिसको दुनिया समझ ही नहीं पाई, वो नुक्ता जिसको अली ने अनन नुक्ता तो तह तलबा कहा है, उसको अली के मानने वालों ने हकीकत में बदल के बदल तलवार पड़ी है मोहम्मद वाले।

दिन मुकरर किया कि सारी उनकी हुकूमत के लोग सब जमा हो जाएं, चरण भी, परन भी, इंसान भी, जिन भी, सब, एवरीबॉडी हैज टू बी देयर। तो महसूस किया कि एक छोटा सा परंद है, वो नजर नहीं आ रहा है, जिसको हुदहुद कहते हैं। हुदहुद जो स्मॉल बर्ड है। हज़रत सुलेमान ने कहा, क्या हो गया भाई, वेर इज़ ही? तो मालूम है पैगंबर है, एक छोटे से परिंदे को भी इग्नोर नहीं करते। इलाही हुकूमत में एक छोटा परिंदा भी इग्नोर नहीं करता। कहाँ गया अभी? हम कंधा में नलगायबीन, कहाँ गया? फिर वो दूर से आवाज़ दिया, सरकार सरकार माफ़ करना, मैं देर हो गई, मैं आ रहा हूँ। एक ऐसी हुकूमत में जहाँ एक औरत हुकूमत कर रही है, और वो हुकूमत में अफसोस ये है कि अल्लाह की इबादत के बजाय वो लोग सूरज की इबादत कर रहे हैं, मुशरिकीन है। यानी परंदा भी शिर्क पर अफसोस करता है। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। कायनात का जर्रा जर्रा भी मुसलमान है। अभी लीजिए, कहां से कह रहा हूं, कुरान, अफ़ग़ैरिल्लाह यबगून फ़लहु अस्लम मन फ़िस्समावात वल-अर्ज़। अल्लाह के दीन से हटकर किसी और दीन की तलाश में जा रहे हो, उसके लिए कायनात का जर्रा जर्रा मुसलमान। कुरान कह रहा है, ये परंदा आकर कह रहा है, सरकार क्या बताओ, मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत बड़ी हुकूमत है, एक औरत है हाकिमा, ममलिकत उसके हाथ में है, लेकिन मुशरिक है। हजरत सुलेमान क्यूरियस हो गए, कहा है कोई जो उसके तख्त को ला सके? जिन एक बहुत बड़ा जिन, उसने कहा आई विल ब्रिंग, ये कितना टाइम चाहिए? तब लान तकुम मकाम, नेक्स्ट सिटिंग से पहले मिलाऊंगा, नेक्स्ट डे की बात। हजरत सुलेमान ने कहा फास्टर फास्टर फास्टर। قال الذي عنده علم من الكتاب, उसने कहा जिसके पास किताब का थोड़ा इल्म था, अना आती कबे ही कबल तद तरफक, आपकी पलक झपकने भी नहीं पाएगी, आपके सामने लाऊंगा। आज एआई पे परेशान है, कुरान एआई से आगे। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक थ्रोन जो है एक मटेरियल है, थ्रोन के माने बाकायदा हुकूमत, वो आना है। अब ये मैं बयान कर रहा था लखनऊ में तकरीबन शायद 10 साल पहले, एक नौजवान लड़का वहीं बैठा, उसने दूसरे दिन मौलाना तकरीबन 1100 किलोमीटर फ्रॉम यमन टू फलस्तीन, फलस्तीन में हुकूमत थी हजरत सुलेमान की, यमन में हुकूमत थी उस मलिका सबा की, 1100 कम अज कम किलोमीटर का रास्ता है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में एक थ्रोन आ गया सामने, जैसे सामने हजरत सुलेमान, हाउज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी। यही है फ़र्क इलाही हुकूमत में दुनिया की हुकूमत में। इलाही हुकूमत वाला कभी नहीं कहता ये मेरा पावर है, सब उसका पावर है। ये दुनिया वाले कहते हैं कि मी माय पावरफुल। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये कुरान ये जो बयान कर रहा है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं है, प्रैक्टिकल चीज़ें हुई हैं। यू एंड मी कैन डू इट, अगर हम लोग उस रास्ते को इख्तियार करें। वो रास्ता क्या है? मानवी रास्ता है। हजरत सुलेमान के लिए सूरह सबा में आयत है, एक रात में इतना सफ़र करते थे जैसे दुनिया उस ज़माने में एक महीने में सफ़र करती है। कुरान की आयत है, कोई और नहीं है। तो वो ज़माना जो होगा इमाम का, वो ज़माने में कैसा ज़माना होगा जहाँ पर इंसान के हाथ में वो पावर आएगा जिसका तसव्वुर इंसान खुद कर नहीं सकता। क्यों, काहे से पावर आएगा? इस पावर का नाम है मानवी रूहानियत। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये हो गई ज़रा सा इमाम की ज़िंदगी का थोड़ी सी झलक। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दें कि इमामत के मसले को हम लोग कोई ईजी ना लें। इमामत इज़ दी गाइडलाइंस ऑफ अहलुल बैत अलैहिम सलातो वसलाम। اللهم صل على ब्रैकेट में किस्सा बयान करके आगे बढ़ता हूँ। सूरह
نساء کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا

0: बचपने से जितना आज यहाँ तक के जो लोग तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो लोग कह रहे हैं जितना स्क्रीन से अलग रखेंगे उतना बच्चा जो है कामयाब रहेगा। इसकी हकीकत की तरफ हम लोगों को काम करना है। हमारे पास तरबियत के लिए इमाम ने फरमाया परवरदिगारा मदद फरमा मेरी, नंबर वन किस मसले में, नंबर वन अबदान अदियान अखलाक, तीन कैटेगरीज को इमाम ने बताया इस दुआ में, 24th दुआ है। अबदान यानी उनकी बॉडी ली तरबियत करूँ मैं, तो मालूम हुआ बॉडी के लिए अच्छी ग़िज़ा देना सही है, उनका गेम का ख्याल भी करना ज़रूरी है, तमाम उनकी एक्टिविटीज़ का ख्याल करना ज़रूरी है, इन तमाम चीज़ों का असर उसके ब्रेन पे होने वाला है। अबदान उसके बाद अदियान दीन का ख्याल करना, मैंने बच्चे को इंजीनियर बना दिया, डॉक्टर बना दिया, सब कुछ बना दिया मगर कलमा मालूम नहीं, सलवात मालूम नहीं, दीन मालूम नहीं, ये तरबियत नहीं है। बैलेंस बराबर जहाँ पर दुनिया की तालीम दे रहे हैं उखरवी तालीम भी देना चाहिए, अदियान की तालीम। तीसरी तालीम को इमाम ने फरमाया अखलाक, मॉरल टीचिंग, कम अज़ कम एक इंसान तो रहे, अगर कुछ भी नहीं बना सके तो कम अज़ कम ह्यूमन बीइंग बना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले, अल्लाह
1: हुम्मा सल्ली अला
0: अजल फराजान। इस सिलसिले में एक रिवायत जो बिल्कुल आपको दूसरी दुनिया में ले जाता हूँ मैं, मिसाल के लिए फरजंदाने हज़रत मुस्लिम, यतीमान मुस्लिम मजलिस होती है ज़िलहज में करते हैं, कोई 9 को 8 को करता है, कोई 22 ज़िलहज को वहाँ मजलिसें होती हैं इन बच्चों के नाम। ये बच्चे कूफे में कैद से कैद हो गए, या करबला से पहले थे या करबला के बाद, कर कूफे में हज़रत मुस्लिम तनहा गए थे, बच्चों के साथ नहीं गए थे। ये जो कैद हुए हैं करबला के वाक़े के बाद कैद हुए हैं, करबला से जब बाहर निकले तब कैद हुए। रोज़ाना एक लूफ ऑफ ब्रेड, एक ब्रेड आती थी, एक गिलास पानी। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मैं भी, मेरे पास भी बच्चे हैं, आप लोग भी गौर करें कितना लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन बच्चों की है। एज वाइज ये लोग 10 और 11 या 11 और 12 से ज़्यादा इनकी एज नहीं है। जब ये देखते हैं बच्चे के रोज़ाना एक ब्रेड आती है सूखी और एक गिलास, बड़े भाई ने कहा क्यों नहीं कल से हम रोज़े की नियत कर लें। सोचिए कि कितना डेप्थ है इस घराने में। मालूम है भूखे रहना है, इस भूख को भी इबादत में कैसे तब्दील किया जा सकता। तो बच्चों ने रोज़ा रखना शुरू किया। दूसरी चीज़, मैं ये चीज़ बहुत मैंने बहुत रोता भी हूँ, बहुत परेशान। जब इब्न ज़ियाद के दरबार में इन बच्चों के सर आए हैं इब्न ज़ियाद जैसा ज़ालिम खड़ा हो जाता है, कहते ये क्या किया तुमने, मैंने कब हुक्म दिया था कि इनके सर काट के लाओ, मैंने ये हुक्म दिया था कि इन बच्चों को लाओ। पूछता है बताओ किस्सा क्या है इन बच्चों का। कामियर ना पूछ, क्योंकि तेरा हुक्म था कि जो भी बच्चों को लाएगा उसको बड़ा इनाम देगा। मेरे दिल में ये हसरत पैदा हुई, दिन भर भागता रहा, चलता रहा यहाँ तक कि घर पहुँचा आधी रात को। बीवी ने पूछा क्यों परेशान हो, क्या परेशान हो, का दो बच्चे जिंदान से निकल चुके हैं और अमीर ने हुक्म दिया है ये जो लाएगा वो उसको बड़ा इनाम मिलेगा। वो मोमिना कहती है इनामात को क्या लेकर के क्या करोगे, तुम अल्लाह पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह अल्लाह देगा। मगर अभी वो आराम कर ही रहा था, अंदर से बच्चों के रोने की आवाज़ आई। दर्राना पूछा कि तू किन बच्चों को छुपाए रखा, जिसकी तू तलाश कर रहा था ये वही बच्चे हैं, अल्लाह के लिए इन बच्चों पर रहम कर। तारीख़ कहती है दाखिल हुआ اور دونوں بچوں کے تماچے مارا, گیسوں کو پکڑے ہوئے دالان میں لایا اور پھر باہر صحن خانہ میں بٹھایا, نہ صرف بٹھایا بلکہ ستون سے باندھ کر کے ایک تلوار رکھ دی تاکہ موت ان بچوں کے سامنے

0: मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ।
1: इतने उदास क्यों पगले? इस कड़े वक्त में हमारा एक साथ रहना हमारी तकदीर के डोर काट देगा। आखिर एक साथ रहने की क्या जरूरत है? जब तक हम इंसानों के फहरिस्त में थे और कदम से कदम मिलाकर चलते थे, जब ये सब ठीक था, आज हम दुम्बे हैं और भेड़िए के खौफ से आवारा है वतन है। कम अज कम मैं तो अब इन चीजों का हौसला नहीं रखता। आले उमैया से भी ठुकराया जा चुका हूँ और इस दुम्बे वाली जिंदगी से भी तंग आ गया हूँ।
0: इब्ने अशास, आज फिर हम क्या गाफिल रहे हैं कि तुमने इस बेवकूफ के दिमाग को घुमा दिया?
1: इत्तेफाक से कहानी बिल्कुल उलट है। मैंने शेख साहब को सीधी राह की हिदायत दी है, तुम मानो या ना मानो, बनू उमैया की बाजी खत्म हो चुकी है, मर गई वो हुकूमत। हमने तो उनकी फातिहा अभी से पढ़ दी है, अब आले जुबैर के धोखेबाजों की बारी है।
0: जाओ, मगर ये जान लो कि आले जुबैर बनी उमैया की तरह बंदर से खेलने वाले नहीं हैं, जो तुम जैसे के साथ साजबाज रखें। उनकी शरीयत में बंदर कुत्ते की तरह है, जिसकी सांस भी नजिस है।
1: इंसानों की फहरिस्त में तो अब हम रह ही नहीं है, चंद दिनों के लिए ऊंट बन जाएंगे और आले जुबैर को लूटेंगे। खुदा हाफिज तगड़े सर वाले, मैं तुम्हारी इन खौफनाक आंखों को बहुत याद करूंगा।
2: शिम्र, मेरी मानो तो इस फितना खेज इलाके से जल्द निकल जाओ, चाहे अपने खजाने और रुसम के बगैर ही क्यों ना हो।

0: क्या जरूरी है कि हम रुस्तम के आने तक इंतजार करें?
1: मेरा सब कुछ ही उसके पास है, बगैर सोने के सिक्कों के शाम कैसे चले जाएं?
2: आपका इसमें शरीफ क्या था भाई?
3: तुम कितने अहमक हो भाई, कम से कम 100 बार तो पूछ चुके हो ये सवाल, एक चीज दिमाग में बिठा लो भाई।
2: अरे भाई, एक फकीर और नादार गुलाम के होशो हवास कहाँ होंगे?
3: तुम इतने भुलक्कड़ हो तो फिर तुम्हें ये कैसे याद है कि तुमने शिम से कब और कहाँ मिलने का वादा किया है?
2: अरे भैया, अगर मुझ जैसा कोई बदबख्त आदमी अपने आका के हुक्म को भुला दे तो उसे अपना आखिरी कलमा पढ़ लेना चाहिए।
4: एक दिन शिव ने इस भूलने की आदत की वजह से मेरे पाँव में घोड़े की नाल ठोक दी थी भाई, उन कीलों के निशान अब तक बाकी हैं। उस दिन के बाद से मैं अपना नाम तो भूल सकता हूँ, मगर शिव की बातें हरगिज नहीं।
3: मेरा नाम जरबी है भाई, जरबी, जरबी।
2: ए मेरे कान, जरबी का नाम अब मत भूलना। जरबी भाई, चलो हम सवार होकर चलते हैं ताकि रास्ता जल्दी कट जाए।
3: तुम अपने गधे पर सवार रहो, मैं इसी तरह तुम्हारे साथ चलता रहूंगा मेरे भाई।
2: ये सवारी नहीं है बेवकूफ, जब हम खामोश रहेंगे तो हमें अपने कदम गिनने पड़ेंगे, लेकिन बातें करने से सफर आसान और छोटा हो जाता है।
3: हाँ ये तो है, बातें करने से लंबा सफर आसान हो जाता है, लेकिन अगर तुमने कुछ चालाकी और मक्कारी करनी चाहिए तो मुझे गुस्सा आ जाएगा।
2: हाँ, जब दिल उदास ना हो तो जबान भी गलत सलत बातें नहीं करती। भाईजान, मुख्तार आपको थप्पड़ मारता था क्या?
3: हरगिज नहीं, थप्पड़ मारना तो गधे के लिए होता है, समझदार आदमी के लिए तो हरगिज नहीं।
2: भाई खरबी, क्या मैं गधे की शक्ल का हूँ?
3: खरबी किस गधे का नाम है?
2: माफी चाहता हूँ, आपका इसमें शरीफ खरबी नहीं था।
3: क्या तुम वाकई उल्लू हो या जान बूझ के बनते हो? जरबी कहाँ, खरबी कहाँ, मैं जरबी हूँ भाई साहब, जरबी, जरबी,
2: जरबी, जरबी, जरबी। ये बहरे कानों, अब नाम मत भूलना।

0: ये तुम दही रोटी खा रहे हो या कोई मजेदार हलवा?
1: खुदा का शुक्र है, बयाबान में फटी हुई चप्पल भी चलने के लिए नेमत है।
0: खुश नसीब हो कि अभी भी कुछ खाने को जी चाहता है। मजे ले लेकर खाते हो तो आदमी का दिल ललचाता है।
1: बिस्मिल्ला।
0: मैं तो तरस गया हूँ किसी बकरे की रान खाने के लिए।
1: देहातियों का डर खौफ ना होता तो खूब जला के भून के खाते।
0: देहातियों का खौफ तो एक

0: अलग बात है, लेकिन क्या मुझे जिबा करके भूनते? यहाँ बकरे कहाँ हैं?
1: ये भेड़ बकरियों का जंगल है और बकरियों के रेवड़ यहाँ बहुत से हैं।
0: इस बियाबान में जितना चाहो ढूंढ लो, टिड्डे ही मिलेंगे या फिर खरगोश, लेकिन वो खरगोश हैं जिनका खाना हराम है।
1: तुम्हें कैसे मालूम कि यहाँ के खरगोश हराम वाले हैं?
0: उनके कदमों के निशान से। हलाल खरगोश के सुम दुम्बे के सुम की तरह होते हैं और हराम खरगोश के घोड़े की सुम की तरह होते हैं।
1: जबरदस्त, मुझे ये सब मालूम नहीं था।
2: मुख्तार कैसा मालिक है जो अपने गुलाम को थप्पड़ भी नहीं मारता?
3: अगर गुलाम फरमाबरदार हो तो मालिक को क्या जरूरत है उसे थप्पड़ मारने की? वो भी मुख्तार जैसा मुसलमान और रहम दिल मालिक। मुझे छींक भी आ जाए तो मुख्तार परेशान हो जाता है। मैंने न जाने कितनी दफा उसे तंग किया है और बदतमीजी कर दी, मगर वो सिर्फ मुस्कुराया है।
2: खुश नसीब हो तुम भाई, भाई
3: जरबी
2: खुश नसीब हो तुम भाई जरबी। थप्पड़ खाना तो मेरी रोज की आदत है। जिस दिन भी थप्पड़ ना खाऊं भाई, तो वो दिन बिल्कुल ही अधूरा है। शिमर भी अगर मुझे देखे और थप्पड़ ना मारे तो गोया उसकी नमाज कजा हो जाती है।
3: शिमर नमाज भी पढ़ता है क्या?
2: तौबा तौबा, बेनमाज तो खुदा का दुश्मन होता है भाई। शिमर मालूम जरूर है, मगर उसकी नमाज रोजा पूरे है।
3: क्या फायदा ऐसी नमाज का? एक नमाजी कभी जालिम और सफाक नहीं बनता मेरे भाई।
2: हाँ, मैं भी हैरान हूँ, क्योंकि मैं उसकी नमाज को भी देख चुका हूँ और उसके जुल्म को भी। खुदा उसके जुल्म का बदला उसको जरूर दे।
3: उसका बदला जरूर मिलेगा अगर तुम मदद करो और बेमानी ना दिखाओ तो। शिमर अपने नापाक अमाल की सजा जरूर काटेगा, तुम्हारी आकबत भी अच्छी हो जाएगी। तुम्हें याद है ना कि मुख्तार ने तुम्हें आजाद करके तुम्हारे जुर्म को माफ करने का वादा किया है, बशर्ते तुम शिमर को हवाले कर दो।
2: तुम्हारी दाढ़ी की कसम भाई, मैं दुआ कर रहा हूँ कि मुख्तार की मदद कर सकूँ, ताकि वो शिमर मनहूस का सर कलम कर दे। इसलिए नहीं कि वो मुझे माफ कर दे और आजाद कर दे, इसलिए नहीं। शिमर का मुझे और मेरी कौम को गाली बकना मेरे लिए लाइलाज मरज बन चुका है। वो मेरा गला घोट देना चाहता है। सोचता हूँ कि अजमों ने शिमर का क्या बिगाड़ा है आखिर। अजमों के नामो नमूद से वो बेजार है। सच सच बताओ, क्या मैं रुस्तम जैसा हूँ? क्या ये जानवर रक्ष की शक्ल का है? अब तुम देखो हम ईरानियों से कैसा बोझ रखता है, हमारा और हमारी कौम का मजाक उड़ा के खुश होता है।
3: बिल्कुल इसके बरखिलाफ मुख्तार सुन्नत पैगंबर के मुताबिक अरब और अजम को एक निगाह से देखते हैं।
2: कुर्बान जाऊं मुख्तार के गैरतमंदाना मौकफ पर। भाई तरबी, मुख्तार अपने गुलामों की शादी कराता है क्या?
3: बंद करो, तुम हो किस मिट्टी के? हाँ, तुम्हें अच्छा लगेगा मैं तुम्हें रुस्तम के बजाय मुस्तम पुस्तम कह के पुकारूं? बाबा मेरा नाम जरबी है। तुम्हारी मनुष्य जुबान अगर मेरा नाम ले नहीं सकती तो मत लो नाम, मुझे सिर्फ भाई कह के पुकारो। तरबी क्या बकवास है?
2: ए जबान, गलत बात क्यों कर रही हो? तुम्हारा नुकसान होगा। ए रुस्तम, कितने सलील हो तुम, कितने अहमक हो, कितने नापहम हो, कितने भुलक्कड़ हो तुम।
3: रुको, क्या कर रहे हो? ये क्या हो गया भाई, अपने आप को क्यों पीट रहे हो?
2: मैं जब तक थप्पड़ न खाऊं मुझे तुम्हारा नाम याद नहीं होगा। मुझे मारो ना भाई, तुम्हें कसम है मुझे थप्पड़ मारो ताकि मैं तुम्हारा नाम ना भूलूं।
3: खुदा की लानत और शिम के सियाह दिल पर, इस हैवान ने तुम्हारे साथ क्या सलूक किया है? कोई बात नहीं मेरे भाई, जो तुम्हारे लिए चाहे उस नाम से पुकारो मुझे।
2: तुम्हें गुस्सा आ जाता है तो मैं डर जाता हूँ।
3: वादा करता हूँ अब गुस्सा नहीं करूँगा।
2: शिमर के साथ वो करेंगे कि वो याद रखेगा।
3: अगर तुमने शिमर को मुख्तार के हवाले कर दिया तो मैं खुद आसीन चढ़ा लूंगा और तुम्हारी शादी करा दूंगा।
2: खाओ कसम।
3: हाँ कसम खाता हूँ
2: भाई। खुदा तुम्हें कोई गम ना दे, आओ मेरे गधे पर सवार बनो।
0: शिमर, तुम्हें नहीं लगता कि इब्ने जुबैद इब्ने ज़ियाद से बेहतर होगा?
1: तुम चाहते हो जिस तरह से भी देख लो, फिर भी इब्ने ज़ियाद बेहतर है। वो हम जैसे लोगों की खूब कदर करता है।
0: ये मत भूलो कि उसने उमर साहब के साथ क्या किया। उसका मतलब पूरा होते ही सारे वादे तोड़ दिए उसने।
1: तोहमत मत लगाओ बंदे खुदा, उमर अपने ही करतूतों की वजह से नामुराद हुआ है। अव्वल ये वादा हुकूमत रहे यजीद ने उमर को दिया था, ना कि इब्ने ज़ियाद ने। दूसरे ये कि उमर साहब को जो करने का हुक्म दिया था उसने वो तो किया ही

0: क्या बात है, चुप हो गए हो भाई, खामोश क्यों हो गए हो?
1: कुर रहा हूँ भाई, मैं अपनी पूरी तकदीर पर कुर रहा हूँ। काश मुझे खुदा इस गधे की शक्ल में पैदा करता।
0: पुराने नेमत मत करो, खुदा को बुरा लगता है ये सब।
1: खुदा की पनाह के उसे कुछ बुरा लगे, ये गधा हर लिहाज से मुझसे बेहतर है। खुदा ने मुझे तमस्खुर के लिए पैदा किया है।
0: ये क्या कुफ्रान नेमत है भाई, इस्तग़फ़ार करो।
1: अरे भाई, लगता है कुछ ज्यादा ही बुरा लग गया तुम्हें। मेरी जगह होते तो मेरा दर्द समझते। एक बालिश का सर और वो भी एक मुट्ठी सी अकल जो किसी काम की नहीं, उस पे शुक्र। खुदा का शुक्र है, लाख लाख शुक्र है। क्या मालिकों की कमी थी कि खुदा ने शिमर जैसा एक दियो मेरे नसीब में दिया। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम्हारा दिल नहीं जलेगा?
0: बेशक मेरा दिल भी जलेगा। मैं तुम्हारी जगह होता तो कुछ तारीखी काम करके दिखाता। देखो, खुदा ने तुम्हें कितना अजीज रखा है, तुम्हें एक ऐसे दिन के लिए जिंदा रखा। अगर कदर ना करो तो गुनहगार हो, अगर तुम में गैरत हो तो खुदा को खुश करोगे और हमारे तारीख वाले रुस्तम की तरह इस दियो को मार डालोगे।
1: खुदा की पनाह।
0: वैसे भाई, ये शिर्म के चेहरे पर धब्बे कैसे हैं?
1: उसे बरस की बीमारी है, उसका सारा जिस्म उसकी सड़ी शक्ल की तरह धब्बे वाला है।
0: बरस? ये बरस कौन सी बीमारी है भाई?
1: ये एक अजीब सी बीमारी है भाई, जिस्म की खाल को धब्बों से भर देती है, न दर्द न दवा। उस जाहिल को उसके ये धब्बे बहुत अजीज है।
0: काश उसे ताउन की वबाई बीमारी हो जाती।
1: वो समझता है कि इन धब्बों ने इसकी हैबत मजीद बढ़ा दी।

0: अगर शेवर ने हमें देखकर ये पूछ लिया कि तुम्हारे साथ ये धुमछल्ला कौन है तो क्या जवाब?
1: कहना वही सारबान है जिसने इब्ने ज़ियाद को ऊंट के पेट के नीचे छुपाकर उसे भागने में मदद की।
0: आम ख्याली है, शिवर भी एक सादा लौसा आदमी है जो मान भी जाएगा।
1: भाई तुम मुझे शिव तक पहुंचा दो, मैं वो काम करूंगा कि उसे जरा सा भी शक नहीं होगा।
0: खुदा की पनाह, शिव चालाकी और मक्कारी का बादशाह है भाई। उसके पास चील की आंखें हैं और घोड़े के कान और कुत्ते की सी सूंघने की हिस है। खयानत की बू को दूर से पहचान लेता है। मैं शर्त लगाता हूँ कि वो तुम्हें देखते ही पागल हो जाएगा और कहेगा कि ये आदमी मुख्तार का आदमी, इसे छेड़ा नहीं जा सकता। फिर क्या होगा, हम दोनों का सर कलम हो जाएगा।
1: मैं भी उसी मालिक का पलावा हूँ जिससे तुम्हारे मालिक की जिंदगी अजीरन बना दिए। तुम सिर्फ मुझे दूर से शिंद दिखा दो, फिर देखो मैं कैसे उसकी रूह कब्ज करता हूँ।
0: क्या तुम कर लोगे?
1: तुमने मुझे इतना छेड़ा है कि मैं तंग आ गया हूँ कसमें खा खा कर।
0: तुम वाकई सही कह रहे हो भाई, झूठी कसम इंसान को खराब कर देती है। बहरहाल तुम शिवर से मुकाबला नहीं कर पाओगे। नमाज पढ़ ली तुमने?
1: तुमने पढ़नी दी है मुझे, चलो मिलकर पढ़ते हैं।
0: हाँ, पहले नमाज इसके बाद खाना। मैं शिवर की तरह नमाज पढ़ना जानता हूँ, कोई मसला तो नहीं?
1: नहीं, इसमें क्या हर्ज है, असल मकसद तो दिल को खुदा तक पहुँचाना है।
0: मछली जल ना जाए।
1: जल्दी आओ भाई, सफर की नमाज।

0: वो लोग क्या कर रहे हैं रुस्तम?
1: मछली की आवाज में रुक गए हैं। बजहर ये रुस्तम कोई बहुत बड़ा मक्कार आदमी है। एक चश्मे जदन ने इतनी बड़ी मछली शिकार कर ली।
0: लाना थे उस मक्कार आदमी पर। ये कौन सा मछली खाने का वक्त?
1: मेरे ख्याल से इस चालाक आदमी ने जरबी को किसी जाल में फंसा लिया। अमीर मछलियां जाने तो इनके करीब हो जाते हैं। मुझे डर है कि ये जरबी के चुगल से निकल जाएगा।
0: मगर बहुत ध्यान से यजदा, उसे भिनक भी पड़ गई कि हम छुपे हुए हैं तो हम शिमर तक नहीं पहुंच सकेंगे।
1: आप बेफिक्र रहे अमीर।
2: Allah.

0: सर्वे भाई मर गए या नहीं?
1: तुम कितने भारी हो भाई सर्वी। चलो चलो कोई बात नहीं, नहर की बड़ी मछलियां तुम्हें खा ले, इनकी तो बिरयानी होगी।

0: अमीर, वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। उसने जरबी को मार डाला।
1: जरबी को मार डाला इतनी आसानी से?
0: मुझे पता था ये उसकी चाल है, मगर वो जरबी को मार देगा इसकी तवक्को ना थी मुझे।

0: जल्दी जल्दी चलना, क्या जरूरी है कि तुझे सीढ़ियों से चखाऊं? आपका गुलाम आ गया सरकार।
1: मेरी जान निकाल दी थी तुमने मनुष, किस जहन्नुम में मर गए थे?
0: खुदा की पनाह, आपको हाथ पैर बांध कर मुख्तार के पास ले जाएं और जिंदा छोड़ दें, ये मौजा नहीं।
1: सोना कहाँ है मेरा अहमक?
0: वो सारा सोना बर्बाद हो गया। कूफे के दरवाजे पर शाकिरी अरब ने मेरा रास्ता रोका, सोना जो देखा तो इतने सवालात पूछे कि मुझे पहचान लिया। हाँ, वो लोग बहुत जले जब उन्होंने ये सुना कि शिमर भाग गया है। उसके बाद मेरे हाथ पैर बांध दिए, मार मार कर मुझे और मेरे गधे को मुख्तार के पास लेकर चले गए।
1: यकीनन तुमने मुख्तार को देखते ही सब कुछ बोल दिया होगा।
0: आपकी दाढ़ी की कसम मैंने कुछ नहीं बताया। उसने पूछा कि शिमर कहाँ छुपा हुआ है, मैंने बात घुमा दी कि जबानी याद नहीं, देख कर बता सकता हूँ। वो भी धोखे में आ गया और यकीन कर बैठा। अपने गुलाम जरबी को मेरे साथ भेज दिया कि आप तक पहुँचा।

0: शिवर कहाँ छुपा हुआ है? मैंने बात घुमा दी कि जबानी याद नहीं, देख कर बता सकता हूँ। वो भी धोखे में आ गया और यकीन कर बैठा। अपने गुलाम जरबी को मेरे साथ भेज दिया कि आप तक पहुँचा दे। जरबी को मार कर मैं भाग आया।
1: लानत है तुझ पर जाहिल कहीं के। तुम अपनी मुट्ठी भर दिमाग के जरिए मुख्तार को धोखा देना चाहते थे। अहमद कहीं के, मैं अपनी इतनी समझदारी के साथ फिर मुख्तार के आगे मखलूब हो गया।
0: आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आए आ

0: चलो जल्दी करो, ये सारा सामान उठाकर यहाँ से जल्दी चले। इब्ने जबाबी, अरे ओ इब्ने जबाबी, जबाबी के बच्चे,
1: उसने अपनी तलवार को अपनी शाल के नीचे छुपाया हुआ है।
0: अबू जहल कहीं गए? अगर तुम धबी को न मारते तो हम उसे लुकमा बनाकर अपनी जान बचा सकते थे।
1: वाकई आप सही कह रहे हैं।
2: उड़ना चाहो या रिंगना चाहो, भागने का रास्ता नहीं रहा। मैं अधूरे काम को पूरा करने आया हूँ। अपनी तलवार से इल्तिमास करो, शायद वो तुम्हारी जान बचा ले।

0: मैं हैरान, इसका सर काट कर एक बोरी में लेके चलो ताकि अमीर को दे सके। बाकी लोगों का क्या हुआ यजदान?
1: सिवाय जरबी के कातिल के और कोई यहाँ नहीं है।
0: तुमने सारी जगह देख ली है?
1: कोई नहीं है, शायद भाग गए हो।
0: ज्यादा दूर नहीं गए होंगे।

0: ये कौन सी जगह है सनान?
1: शेख, जब सनान सारबान हो तो उसे मालूम है कि तुम जैसे ऊंट को कहां बिठा। मुख्तार के खौफ ने मुद्दतों से हमारी नींदें उड़ा के रख दी हैं। आज रात तुम अपने बचपन के दिनों की तरह पुरसुकून नींद सो सकते हो और मैं जवानी के दिनों की तरह मुख्तार से बेखौफ होकर अपनी दुल्हन के हिजले में जाऊंगा।
0: सही, तो हमारे आवारा मजनू ने लैला की भूत सुन के रास्ता बदल लिया है। रुकने का इरादा तो नहीं है तुम्हारा?
1: हमारा दिमाग खराब था कि हम यहाँ आए? हमें आज की रात एक पुरम जगह में बितानी होगी।
0: सनान, तुम भूल गए हो हमने कितनी मुसीबतों से कूफे के रास्ते काटे हैं। मुख्तार के आदमी हमें शिकार करने के लिए वक्त की तलाश में हैं। तुम अपने पैरों से चलकर जाल में गिरना चाहते हो?
1: हम मुख्तार की हुकूमत से बहुत दूर हो चुके हैं।
0: सनान, हमारी लापरवाही ने हमें आज ये दिन दिखलाया है। क्या कम तकलीफें उठाई हैं हमने? क्या सोचकर अपने आप को इस गांव में फंसा लें? इन दिनों मुख्तार ने लालिश का भूत बहुतों के सर पर सवार कर दिया है। अगर किसी देहाती ने चंद सोने के सिक्कों की लालिश में हमें फंसा दिया तो फिर क्या करेंगे?
1: मुख्तार का हुक्म इन इलाकों में नहीं चलता। इतनी चूचरा मत करो। तुम्हारा हुलिया उस मुर्दे की तरह है जो कब्र से उठाओ। आओ चलें, आज रात अपने आप को सुकून दें ताकि बसरा तक पहुंच सकें।
0: मैं जहालत नहीं करूंगा।
1: तुम गधे भी और बुजदिल भी। तुम्हारे बाप अशस की जुरत तुमसे बहुत अच्छी थी।
0: जहन नसीब अनस के, क्या खूब शेर बेटा परवान चढ़ाया है उसने। एहतियात को डर का नाम नहीं दिया जाता सनान।
1: क्या कसम खाऊं कि इस गांव के लोगों ने मुख्तार का नाम तक नहीं सुना है। उनकी सारी दीनो दुनिया उनके गाय गधे भेड़ और उनकी फसलें हैं।
0: इन्हीं लोगों से तो डरना चाहिए। खतरा हमेशा वहीं पर होता है जहाँ की तवक्को नहीं होती।
1: तुम्हारी मर्जी, मत आओ। मैं आज रात अपने ससुर के घर जाऊंगा और फुकरा और जोफा के अमीर की बर्बादी के नाम पे खूब पीऊंगा।
0: सनान, देखो शैतान के धोखे में मत आओ। तुम मुद्दतन से मुख्तार के डर से आवारा हो। सिर्फ आज रात के लिए सब्र करो। हम कल रात

0: बसरा पहुंच जाएंगे, फिर इतना ऐशो नोश करना कि फट जाओ।
1: तुम नहीं समझोगे शेर, नहीं समझोगे। अगर तुम्हारे इंतजार में भी अजरा जैसी कोई नौजवान दुल्हन घर में बैठी होती तो तुम मेरी मजबूरी समझ जाता।
0: मत जाओ अहमक, मत जाओ।
1: इस जिंदगी में हिमाकतों के बगैर दिल को हरगिज़ सबक नहीं मिलता। फिर मिलेंगे अहमक कहीं के।
0: ये बात सच है, सिर्फ इस जैसा अहमक ही हुसैन इब्ने अली का सर काट सकता था।

0: ये क्या तरीका था जरा, बच्ची क्यों बन रही हो? अरे क्या हो गया भाई, तुमने फिर उल्टे सीधे वहमोगुमान शुरू कर दिए। जाओ अपना मुंह हाथ धो के हुलिया दुरुस्त करो। खुशामदीद खुशामदीद, आपको देखकर बहुत खुशी हुई। जहे नसीब के आपने गरीबों को भी याद किया।
1: इराक के हालात दरहम बरहम हो गए हैं बीवी। कुछ महीनों से कूफे में एक ऐसा जलजला आया था कि आज तक सब उसकी जद में आ रहे हैं।
0: खुदा की पनाह, कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ? कोई मरा तो नहीं?
2: बीवी, हमारे दामाद की जलजले से मुराद जंग है, वाकई जलजला नहीं।
1: बीवी, अब तक हमारी बेगम हमें देखना नहीं चाहती।
0: इतने दिनों के बाद उसे मिलने आते हैं तो उसे अजनबियत सी होने लगती है। कुछ दिन उसके पास रहेंगे तो ठीक हो जाएगी।
1: मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है बीबी, मैं बसरा की तरफ जा रहा हूँ। जानबूझकर इधर का रास्ता अख्तियार किया ताकि आप लोगों को देख सकूं, और खास तौर पर अजरा की वसालत के लिए। तुम माँ हो बीबी, तुम्हें अपनी बेटी की ऐसी तरबियत करनी चाहिए थी कि वो अपने शौहर का

0: जुबानी की खातिर माफ कर दीजिए।
1: ज्यादा लिहाज और रख रखाव मत करो बीबी। अगर मुझे जुबान वाली बीबी चाहिए होती तो ऐसी दो तीन थी मेरे पास, उनमें से हर एक की 40 गज की जुबान है। बहुत बक बक करती थी।
2: ये लो बीबी, इससे शेख के लिए कबाब बना लो।
1: बीबी, अजरा को पुकारने से गाफिल मत होना। और सुनाओ मेरे दोस्त, क्या नई ताजी खबरें हैं?
2: खुदा का शुक्र है, क्या बताऊं जनाब, मेरे पास कौन सी खबरें हो सकती हैं? जंग की खबरें आम होती हैं जो कि आपके पास हैं। हमारी खबर है कि हम बेखबर हैं। गधे का बच्चा हो गया है और आजकल खेलता कूदता है।
1: बड़ी मुद्दतों से मैं खुलकर नहीं हंसा था। ये हसमुख मिजाज होना एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी कदर करो। काश मैं भी तुम्हारी तरह एक आम सी रैयत होता और गधे भेड़ और जमीन में मगन रहता।
2: शेख साहब, ये क्या कह रहे हैं आप? दिन रात जानवरों की तरह काम करने की भी भला कोई हसरत करता है क्या? ये निशाना देख रहे हो, जितने हल जमीन पर चलाए हैं उसके निशानात हाथों पर भी रह गए। कूफे की क्या खैर खबर है?
1: कुछ नहीं, एक कुत्ता गया और एक भेड़िया आ गया। बदबख्त तो आवाम है जिन्हें हर दौर में डर डर

0: तुमने ही किससे सुना कि उसने एक मुकद्दस हस्ती का कत्ल किया है? गांव की सारी लड़कियां तुम्हारे शौहर से हसद करती हैं। तुम्हारा शौहर मकामो मनसब वाला है, जंगजू इंसान है। क्या क्या खाओ खुदा की कसम, इन बातों से तो खून की बू आ रही है। अरब की किस औरत ने इससे शादी कर ली है कि तुम इसकी दूसरी बीवी ठहरोगी? बस बस बकवास बंद करो, तुम हद से ज्यादा नखरे दिखा रही हो। ऐसे नखरे दिखा रही हो जैसे हमारी गूंगी बेटी के लिए 100 रिश्ते दरवाजे पर खड़े हों। एक जवान लड़की बिन ब्याहे घर में बैठी रहे तो लोग दसियों बातें बनाते हैं। वो कहां से बुढ़ा लगता है, तुम्हारे बाप से ज्यादा जवान लगता है। अगर ये एक आंख वाला देव ना होता तो तुम कुंवारी मर जाती। हमारी इज्जत दाव पे ना लगाओ अजरा। क्या तुम चाहती हो कि हम गांव के लोगों के सामने शर्म से पानी पानी हो जाए? खुदाया ये कैसी आफत हमारी जान पे आ गई है।
1: अजरा अजरा अजरा, ये पैर सहरा की चलती रेत में चल चल के जल चुके हैं। इनकी दवा तुम्हारे हाथ में है और एक ठंडे पानी का तसला जिससे तुम मेरे पैर धुलाओगे।

0: मैं दस्तक गिनूंगा, अगर तुम नहीं आई तो तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम्हारा सर ही कलम कर दूंगा। सुना तुमने? तुम नहीं आई तलाक नहीं दूंगा, तुम्हारा सर कलम कर दूंगा।
1: जाओ मेरी बेटी, जाओ मेरी गुड़िया, जाओ ना मेरी जान।
0: यहाँ

0: ये लो शेर, मैं तुम्हारे पांव ऐसे झुलाऊंगा कि रास्ते की सारी थकन भूल जाओगे।
1: तुम्हारे हाथ तो पत्थर की तरह है। आखिर मेरी एक बीवी है, बीवी है वो मेरी। मेरा दिल चाहता था कि मेरी मनहूस बीवी मेरे पांव धुलाए, ना कि मेरा बुढ़ा सुसार।
0: खुदा गारत करे तुम्हें अजरा, ये सब क्या कर रही है बेगैरत कहीं की? वो तुम्हारा शौहर है, कोई अजनबी तो नहीं है? तुम मेरी इज्जत से क्यों खेल रही हो बेस कहीं की? आज रात क्या तुम्हें मार डालूंगा ये अपने आप को।
1: बाप नजर आ रहा
2: है। मेरी बच्ची, मत मारो इसे।
0: मर जाओ, ये सब तुम्हारे रहम और करम से हुआ है। अगर तुमने इसे तौर तरीके सिखाए होते तो ये ऐसी नहीं होती।
1: कहाँ जा रही हो?
0: बच्चे नहीं, कहाँ जाओगी बच्चे? मुझसे रहो।

हो जा, वेक अप, ज्यारती जाएगा त्यारती सवार। किसी के घर पे ना किसी माशरे में अल्लाह सुबहान व तआला आएगा और आके तब्दीलियां लाएगा, नहीं। खुदा ने कह दिया अगर तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, बेहतर से बेहतर बनना है, ईमान के अंदर तरक्की लानी है, इस्लाम के अंदर तरक्की लानी है, कौम और माशरे को आगे चलाना है, तुमको सबको फर्द, हर फर्द को मेहनत करनी पड़ेगी। इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। इसलिए आज एक ऐसे मौजू पे बात करनी है इंशाअल्लाह ताला जिसके लिए हमें शैतान की बहुत जरूरत पड़ेगी। आप कहे ये क्या हुआ मौलाना, शैतान की जरूरत पड़े? हाँ, मैं अभी से कह देता हूं, आज जो मौजू पढ़ने वाला हूं इसमें किसी की तरफ ना उंगली, न किसी की दिलाजारी, न किसी को बुरा लगाने के लिए, न किसी की तरफ इशारा, नहीं। ये माशरे का आलम है और इस माशरे को अगर हमें बदलना है, बेदारी को पैदा करनी है, तो इस पे अमल करने के लिए, इस मौजू को सुनने के लिए मुझे और आपको शैतान से पनाह चाहिए। देखिए मैं एक आपको मिसाल दे देता हूं। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में सूरह नहल, कुरान मजीद का 16वां सूरह, आयत का निशान है 98, चैप्टर 16 वर्स नंबर 98, ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा क़रअतल कुरआन फस्तईज़ बिल्लाहि मिनश शैतान अर्रजीम। ऐ मेरे हबीब, बात किससे हो रही है? हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वइज़ा क़रअतल कुरआन, ऐ मेरे हबीब जब भी, जब कभी, जब कुरान को पढ़ो तो अल्लाह सुबहान व ताला के पास ठुकरा देने वाला शैतान से पनाह मांगो। खुदाया किताब तेरी, आयतें तेरी, उसकी हर सूरा की इब्तिदा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, और तू हमें क्या कह रहा है, अपने हबीब को क्या कह रहा है कि जब भी कुरान मजीद को पढ़ो मुझसे, अल्लाह सुबहान व ताला से शैतान की पनाह चाहो और मांगो। खुदाया आयतें तेरी, खुदा ने क्या कहा, ऐ मुसलमान कुरान पढ़ते वक्त भी शैतान आ सकता है। कुरान की आयतों को समझने के लिए वहां पर भी शैतान तुझे वरगला सकता है। कुरान की आयतें क्यों ना हो? तो अरे भाई मेरे जैसी की बात हो, खाली डब्बे की बात हो, वहां शैतान नहीं आ सकता? मैं कहता हूं जरूर आएगा आज। इसलिए अभी से मौजू की इब्तिदा हूं, इससे पहले जो भी बात आज होगी शैतान से पनाह ले लीजिएगा, क्योंकि आप हजरात के अजहान में, जहनों में शैतान आएगा, यहां से कुचली करेगा, यहां से कुचली करेगा, इस कान से वसवसा करेगा, इस कान से वसवसा करेगा, दिल में कुछ सवालात पैदा करेगा। शैतान आज आने वाला है, वो नाजिल होगा हमारी इस मजलिस में। इसलिए अभी से खुदा से कहो, खुदाया हम बैठे हैं आज मजलिस सुनने के लिए लेकिन शैतान की पनाह चाहते हैं। ऐसा ना हो कि यह मजलिस सुन के हम पे शैतान सवार हो जाए और जो मजलिस का मुद्दा और मौजू है वो हमसे और हमारे हाथ से निकल जाए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बात ही कुछ ऐसी है जिसे हमको दर्द होगा, वो नहीं उर्दू गुजराती में कहते हैं दुखती रग पे मैं आज हाथ डालने वाला हूं, ऐसे बोलते हैं उर्दू में, हाँ दुखती रग, क्या बोले दुखती रग ना, जहां पर दर्द होगा वहां दबाने की कोशिश करूंगा। लेकिन भाई ये मेरे लिए नहीं, ये किसके लिए है? बेदारी के लिए, वेकअप के लिए, ज्यारती जाएगा त्यारती सवार के लिए। हमारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बहुत बड़ी परेशानी थी, वो दुनिया से गए ना इस परेशानी को पेश करते हुए गए, लेकिन ये परेशानी को पेश करूं इससे पहले, ये जो हमारा दीन है, दीन इस्लाम, इसका मुद्दा क्या है?

इसकी जड़ क्या है, इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज होनी चाहिए कि अगर वो चीज हट जाए तो दीन जो है वो खतरे में चला जाएगा। देखिए, परवरदिगार आलम ने हमारे नबी और अइम्मा और अंबियाए किराम को हुक्म बहुत दिए हैं, लेकिन हमारे पास वक्त है नहीं, दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम है, इसलिए कुछ आयतें आपके सामने पढ़ूंगा। मैंने कहा बहुत सी आयतें हैं कुरान मजीद के अंदर, 6236 आयतों में से बहुत सी दफा अल्लाह सुबहान व तआला ने अपने अंबिया को खिताब करते हुए बहुत से पैगाम दिए, लेकिन उन पैगाम में ये जो पैगाम आज बयान कर रहा है परवरदिगार आलम ने हमारे नबी को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दिया है और कहा, सूरह जुमर, सूरह जुमर आयत का निशान 11, 12, 13, 14, 39, 11, 12, 13, 14। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, कहा है मेरे हबीब कुल इन्नमा उमिरतु अन अअबुद अल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन। ऐ मेरे हबीब कह दीजिए अपनी कौम को कि मुझे हुक्म दिया गया, कह दीजिए मुझे हुक्म दिया गया है कि अल्लाह सुबहान व ताला की इबादत कर, और कैसे, मुखलिसन लहुद्दीन, तेरा पूरा दीन जो हो वो अल्लाह सुबहान व ताला के लिए इखलास के साथ हो, खालिसतन लिल्लाह हो। 12वीं आयत, वा उमिरतु लिअन अकूना अव्वलुल मुस्लिमीन। अपने हबीब हबीब को कहा, कह दीजिए अपनी कौम को कि मुझे यह भी हुक्म दिया गया है कि मैं सबसे वो पहला बनूं कि जिन्होंने खुदा वंदे करीम के सामने तस्लीम किया है, अपने आप को पूरा खुदा के हवाले कर दिया है। और उसके बाद मेरे हबीब ये भी कह दीजिए, कौल इन्नी अखाफो इन असई तो रब्बी अजाब यौमिन अजीम। 13वीं आयत, 39, 13, ये भी कह दीजिए मेरे कौम को, अपनी कौम को कि मैं रसूल खुदा, मैं कह दीजिए इन्नी अखाफ, मुझे डर लगता है, इन असई तो रब्बी, अगर मैंने मेरे परवरदिगार की नाफरमानी की तो कयामत के दर्दनाक अजाब का जो दिन है उससे मैं डरता हूं। रसूल खुदा कयामत के दिन से डरते हैं और मैं जा फ्री, रोको मत, जाने दो इनको। रसूल खुदा को कहा जाता है, अपनी कौम को कह दो, कह मेरे हबीब तू कयामत के दिन से डरता है अगर तूने अल्लाह सुबहान व ताला की नाफरमानी की। 14वीं आयत, ये भी कह दीजिए, अल्लाह अबुद मुखलिसन लहु दीनी, अल्लाह की ही सिर्फ मैं इबादत करूंगा और मेरा जो दीन है खालिसतन लिल्लाह होगा। ए मुसलमान, ये तेरा जो दीन है, तेरा जो मजहब है, तेरा जो अकीदा है, तेरे जो काम करने का तरीका है, इसमें अल्लाह सुबहानहु व तआला के लिए तू कितना काम करता है, तेरी नीयत में अल्लाह कितना है। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जाते वक्त कहते हुए चले और निकले, कहा है मेरी कौम, ऐ मेरे मानने वाले, इन्नी अख्वफु मा अखाफु अलैकुम, जिस चीज का मुझे तुम में सबसे बड़ा डर है। नबी करीम का किसका डर था कि मेरे बाद मेरी कौम क्या करेगी? अख्वफु मा अखाफु अलैकुम, जिसका मुझे सबसे ज्यादा डर है, अश्शिर्क अस्गर, छोटा वाला जो शिर्क है ना, उसका मुझे बहुत डर है। वकील या रसूल अल्लाह व मशर्कुल असगर, ए अल्लाह के रसूल, छोटा वाला शिर्क ये क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है? नबी करीम ने क्या जवाब दिया, किसी को पता है? देखिए, इसलिए मैंने कहा शैतान से पनाह ले लीजिएगा, आज बातें बहुत कड़वी होगी। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, मैं डरता हूं कि मेरी उम्र

रहा हूं, बेदार बेदारी, वेक अप, पता भी नहीं चलेगा। मौला ने क्या कहा, रिदा का अन नफ्स का फसाद अकलिक, रिदा का अन नफ्स का फसाद अकलिक। ऐ मुसलमान, अगर तू अपने आप से राजी है तो समझ ले तेरी अक्ल में कोई गड़बड़ है। फसाद अकलिक, तू जो समझता है ना वहां काम बिगड़ गया है। कैसे हो सकता है कि तू अपने आप से राजी हो जा कि जो तू कर रहा है वो सही है? अगर तू अपने आप से राजी, रिदा का अन नफ्स का, अपने लिए अगर तू रजामंद हो गया, फसाद अकल, ये तेरी भूल है। लेकिन हमें पता ही नहीं चलता, हर काम में रिया, हर काम में रिया, हर काम में दिखावा। तो एक मौजू कुरान मजीद का जो है वो क्या है, नमाज, जिसके लिए खुदा ने रिया की बात की। दूसरा मौजू, वापस तीसरी चौथी पांचवीं मर्तबा कहता हूं, शैतान पे लानत भेजिए, अभी आएगा, अभी जो बातें आएगी ना, अभी दौड़ कर आएगा, सर पे सवार हो जाएगा। सलवात की बरकत लेते हैं, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। दूसरी जगह, दूसरा मौजू जिसके लिए खुदावंद करीम ने पूरे कुरान मजीद में रिया के मौजू को टच किया, वो क्या है, ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, चैप्टर 4 वर्स नंबर 38, चौथा सूरा 38वीं आया, ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, والذين ينفقون أموالهم رياء الناس ولا يؤمنون بالله ولا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر। वो लोग कि जो अल्लाह की राह में इन्फाक करते हैं, पैसे देते हैं, दान करते हैं, वल्लदीना युन्फिकूना अमवालहुम, जो लोग अपने माल का इन्फाक करते हैं, रियान्नास, लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन खुदा ने साथ में क्या बात की, ला युमिनूना बिल्लाह वला बिल्यौमिल आखिर, ये वो लोग हैं कि जो हकीकत में अल्लाह पे ईमान रखते ही नहीं, ना आखिरी दिन कयामत पे रखते ही नहीं। इन लोगों के सर पे कौन सवार हो गया है? हा, उसके बाद आयत में क्या कहा गया, वमन यकूनु लहु शैतानु करीना वसा करीना, अरे जिसका साथी शैतान हो तो शैतान से बदतर साथी कौन हो सकता है? मालूम क्या हुआ कि खुदाबंद करीम ने यह इन्फाक, ये दान, खैरात, सदकात, पैसे देना, यहां पर अगर रिया आ गया तो खुदा की नजर में यह है कि मैं खुदा पे ईमान रखता ही नहीं, कयामत पे ईमान रखता ही नहीं, और मेरे आजू बाजू में और कोई नहीं, कौन है, शैतान। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो कुरान का ये दूसरा मौजू है जहां पर रिया की बात आई है। आगे बढ़िए, कैसी मिसाल दी है परवरदिगार आलम ने रिया के लिए। ऐलान रब्बुल इज्जत हुआ, सूरे बकरा, कुरान मजीद का दूसरा सूरा, आयत का निशान 264। उर्दू समझता है सही से नौजवान? 264, सल्लु अला मुहम्मद वाले मुहम्मद। यानी अब देखिएगा किससे बात हो रही है, हमसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुब्तलू सदकातकुम बिल मन्न वल अज़ा, ऐ ईमान लाने वालों, अपने दिए हुए सदके को ताना और अजियत देने से बर्बाद न करो। या अय्युहल्लज़ीन, हमसे बात हो रही है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू ला तुब्तलू सदकातकुम बिल मन्न वल अज़ा, किसके जैसा, कल्लज़ी अनफ़क़ा मालहू रियान्नास वला युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, बिल्कुल उन्हीं की तरह
کہ جو اللہ کی راہ میں پیسہ دیتا ہے دکھاوے کے لیے، نہ اللہ

वहां पे ईमान उसका है, न उसके आखिरत के दिन पे उसका ईमान है। मसलहू का मसल सफवानिन, उसकी मिसाल कैसी है, एक ऐसे पत्थर जैसी। मसलहू का मसल सफवानिन अलैहि तुराब, एक ऐसा पत्थर के जिसके ऊपर मिट्टी डाली जाए। फअसाबहु वाबल, और उसी पत्थर पे जिस पे मिट्टी हो धम धमा दम बारिश आए। फतरकहु सलदा, नतीजा क्या होगा, क्या खत्म हो जाएगा, मट्टी जो थी वो गायब हो जाएगी। का रिया दिखावे के लिए जो भी पैसा देगा, इन्फाक तू करेगा, वो सब ऐसे बर्बाद हो जाएगा कि जैसे किसी पत्थर पे मिट्टी हो और उसी मिट्टी पे बारिश गिरे और नतीजा बारिश के साथ वो पूरी मिट्टी बह जाएगी। पता रखो सलदा, सलदा वो पत्थर जो है ना वो बिल्कुल, आपको पता है उसका तर्जुमा हकीकी है, वो तरको सलदा, वो पत्थर गंजा हो जाएगा। गंजा समझते हो, देख लो ये, इसको गंजा कहते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, कुछ नहीं रहेगा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में कुछ अच्छी आदतें हैं। अगर ऐसा है तो तू और तेरा खुदा, उनको पता है तेरी नीयत। ये नई नस्ल के लिए, नए माशरे के लिए कुछ अच्छे आदाब सिखाने के हैं, ताकि अगली नस्ल हमारी तरह करती रहे। लेकिन शर्त यह है कि इस नीयत को जाने कौन सिवाय अल्लाह, तू और तेरा खुदा। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो दिखावे के साथ करने के हैं, लेकिन नीयत हो के किसी को दर्श देने के लिए, किसी को सिखाने के लिए। लेकिन इंसाफ से मुझे बताइए, क्या हर काम में मेरी नीयत सिखाने की होती है? मैं आपको दलील दे दूं कि सिखाने की बात कुरान में आई है। परवरदिगार आलम ने इसी सूरह बकरा में चैप्टर 2 दूसरा सूरा 271वीं आयत, चैप्टर 2 वर्स नंबर 271, खुदावंद करीम ने कहा, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन तुब्दु सदकात फनिअमन हिया। ए मुसलमानों, अल्लाह की राह में सदका दिया करो, खैरात करो, दान करो। व इन तुब्दु सदकात फनिअमन हिया, बहुत अच्छी चीज है सदके देना, खैरात करना, इन्फाक करना, फाड़ा मा नोंदा वो बहुत सारी वस्तु से। लेकिन लेकिन खुदा ने कहा वहीं तुब्दु सदकात फनिअमन हिया वन तुखफूहा व तूतूहल फुकरा फवा खैरुल लकुम, लेकिन अगर यही सदका, यही खैरात, यही इन्फाक अगर छुपा के करो और गरीबों में बांटो तो ये बेहतर है। ये कौन कह रहा है? को की खुदा को मानता हूं लेकिन खुदा की बात नहीं माननी। ऐ मुसलमान, इस रिया से अपने आप को बचा ले, ऐसा ना हो कि काली चूंटी की तरह तेरी जिंदगी में ये रिया आ गया हो और तुझे पता भी नहीं कि मेरा हर काम जाया हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर काम मैंने दिखावे के लिए किया। आगे बढ़िए, इसी कुरान मजीद में एक और आयत है, चैप्टर 2 वर्स नंबर 274, वहां पर ऐलान रब्बुल इज्जत होता है। यहां से आपको बता देता हूं कि खुले आम करने की भी इजाजत है, बशर्त ये कि मुखलिसन लहुद्दीन हो, अल्लाह के लिए हो, रिया ना हो। और जिसको भी कहोगे ये तो सब दिखावे के लिए करता है, तुझे हक नहीं ये बता बोलने का, उसकी नीयत को तू नहीं जानता। लेकिन मैं खुद तो अपनी नीयत को जानता हूं ना, मैं खुद अपनी नीयत को तो जानता हूं। हाँ, मुझे और आपको किसी के सामने उंगली उठाने की इजाजत नहीं कि ये सब दिखावे के लिए करता है, ये दीन इसकी इजाजत नहीं देता। बात मेरी ये हो रही है कि मैं अपने आप से पूछूं, मैं जो कर रहा हूं उसमें रिया कितना है। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो खुदावंद करीम ने सूरह बकरा की 274 में क्या बयान किया, कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।

क्यों? जब लोग तारीफ करे तो क्या होता है, काम और ज्यादा दिखाने का इंसान के अंदर शौक पैदा होता है। कहा तू दिखाने वाला आदमी है, मुराई है। और चौथी निशानी क्या, वनकस मिन्हू इदा लम युस्ने अलैह, अगर उसकी तारीफ न की जाए तो उसी अमल को बहुत कम कर देगा, उसी अमल को बहुत कम कर देगा। ऐ मुसलमान, अपनी जिंदगी में देख ले, ये दीन का अगर कोई सुकून है तो वह इखलास, अल्लाह सुबहान व तआला के लिए काम करना है, हर मोड़ पे, हर बार पे, हर काम के लिए, इबादतों में, दान में। मुश्किल है ये काम, पता नहीं चलेगा। इमाम ने किसकी मिसाल दी थी, काली चूंटी की, काले कपड़े पे, अंधेरी काली रात में लोगों के अंदर ये छोटा सा शिर्क, ये रिया आ जाएगा, बंदे को पता भी नहीं चलेगा। अब देखिए, हर चीज का कोई ना कोई इंतहा होती है, लेकिन ये नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल है। आपने कहा है माकान अलिल्लाह यन्मु, जो काम खुदा के लिए किया जाएगा ना उसमें नमू होगा। नमू समझते हो, नमू गुजराती में कहे उग से, उग से। उर्दू में क्या कहेंगे, हाँ ग्रो। जो काम खुदा के लिए होगा वो आगे ही बढ़ता जाएगा। मतलब ये हुआ कि मुसलमान देख ले, तेरी जिंदगी में अगर कुछ काम ऐसे हैं कि जो अब रुकने वाले हैं, रुक गए हैं, रुक जाते हैं, समझ ले इसमें इखलास नहीं था। दुनिया के अंदर कत्लो गारत कितने हुए, आदम से लेकर बहुत से हुए ना, लेकिन एक ऐसा वाकया है जो 1400 साल पहले हुआ था, आज तक बाकी है। जैसे करबला की याद मनाई जाती है, ऐसे दुनिया में कोई और वाकया है कि जो बाकी हो? यह दलील है उस बात की कि इस वाकये के अंदर रिया नहीं था, इखलास था। वहां जो भी हुआ सब खुदा के लिए हुआ था, इसलिए आज तक बाकी है। और पूरे करबला का अगर खुलासा लिया जाए या माना जाए या समझा जाए, तो मैं समझता हूं कि हमारे मजलूम इमाम का एक ही जुमला पूरे करबला का खुलासा है। पता है कौन सा जुमला, रदन बेकदाही व तस्लीम अल अमर। खुदाया तेरे फैसले पर ये हुसैन राजी है, व तस्लीम अल अमर, खुदाया तेरा जो भी हुक्म है, हुसैन का सर झुक जाएगा तस्लीम से, जो भी होगा, जो भी होगा, जैसे भी होगा, जहां भी होगा, जिसके साथ भी होगा, हुसैन इस पर राजी है। क्यों? क्योंकि हर काम खुदा के लिए है। अज़ादारो, ये जुमला आपको कुछ याद दिलाता है? मैं आपको याद दिलाता हूं, मुख्तार के दरबार में जब जालिमों को पकड़ा गया ना, तो एक जालिम गिरफ्त में आया और मुख्तार ने पूछा, ए बदबख्त तू बता, तूने करबला में क्या देखा है? कहा मुख्तार, एक ऐसी चीज मैंने देखी है, मैं बार बार वो चीज को देखने के बाद कहता रहा हूं, ऐ काश मैं जिंदा ना होता। मुख्तार ने कहा, तूने ऐसा क्या देखा है? कहा मुख्तार, आशूर का दिन था, हुसैन के सब अजीज व अंसार शहीद हो चुके थे। एक मोड़ वो था, मैं दूर से देख रहा था, हुसैन खैमे के अंदर गए और अपने हाथ में कुछ लेकर बाहर निकले। मुझे लगा अब हुसैन कुरान मजीद को लेकर निकल रहे हैं, हुसैन अपने अबा के दामन में कुछ लेकर निकले। जब गए मैदान की तरफ, बाद में पता चला कि जब हुसैन ने अपने दामन को खोला तो हुसैन ने उस दामन में से एक छोटे बच्चे को पेश किया। मैं समझ गया कि हुसैन

का छोटा लाल है। उसके बाद जो हुआ वो हुआ, आपको पता है ना, तीर लगा। मुख्तार ने कहा उसमें कौन सी ऐसी हैरत की बात है। कहा मुख्तार इसके बाद जो मैंने देखा ना वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया। कहा तूने क्या देखा। कहा मैंने देखा हुसैन का ये छोटा सा बच्चा जब शहीद हो गया ना तो इसी बच्चे के लाशे को लेकर हुसैन खैमे की तरफ आए और मैं दूर से देख रहा था। मैंने क्या देखा कि हुसैन एक बार आगे बढ़ा फिर पीछे हटा और आगे बढ़ा और पीछे हटा। उसी असना में मुझे जहन में ये सोच में आया कि हुसैन क्यों यहाँ जाते आते हैं। बस दिमाग में ख्याल आया कि छोटे बच्चे का सवाल है ना, शायद शायद हुसैन सोच रहे होते कि जिस बच्चे को पानी के लिए मैं ले गया था अगर उसकी माँ पूछ लेगी कि मेरे लाल का क्या होगा तो हुसैन क्या जवाब देगा। अजादारों आपको अमल रोजे आशूर याद आ गया, यही अमल को हम अंजाम देते हैं। अरे सात बार आगे सात बार पीछे जाते हैं और हमें हुक्म दिया गया है मुसलमान पर इन्ना लिल्लाह वा इन्ना इलैहि राजिऊन, रतन में कदाई व तस्लीम अल-अम्रे। हुसैन ने सब खुदा के लिए कुर्बान किया था। एक शायर मुझे याद आ गया, मुझे पता नहीं, मैं उर्दू का जानने वाला नहीं, लेकिन मिन्हाज भाई आप तो शायर हो, एक शायरी आप मुझे याद दिला दीजिए। कोई दामन की बात है ऐसे कि शब्बीर उठ खड़े हुए नए बराबर को झाड़ के। कब? शायर ने कहा जब असगर का लाशा पेश किया। हुसैन ने कहा माबूद अब कुछ नहीं बाकी। अजादारो अली असगर कौन है? ये अली असगर, यही मुख्तार का जमाना है। सैयद सज्जाद ने एक बार किसी को मदीना में पूछा, बार बार पूछा करते थे करबला के कातिलों का क्या हुआ, लेकिन सवाल करने वाला जब आया है तो आज सवाल करने वाले ने सैयद सज्जाद को पूछ लिया। कौला मौला जब भी आता हूँ आप बार बार मुझे पूछते हो हुरमला का क्या हुआ, मौला आप हुरमला का क्यों पूछते हो। सैयद सज्जाद ने कहा तुझे पता नहीं, अरे रोजे आशूर हुरमला ने जो तीर मेरे नन्हे असगर पे मारा था वो तीर असगर के गले पे नहीं हमें बैठ के सी। अला लअनतुल्लाह अल-क़ौमिल ज़ालिमीन وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ مَا تَمَعُ حُسَيْنَ

मिलेंगे, हिंदुओं में मिलेंगे, सिखों में मिलेंगे, हत्ता वो जो एथीस हैं वो भी कहते हैं हुसैन हुसैन है। ऐसा हर दुनिया के दीन मजहब में मौला हुसैन का चाहने वाला है, लेकिन यजीद का चाहने वाला सिर्फ मुसलमानों में मिलेगा। लोग हैं या नहीं है? तवज्जो फरमा रहे जाने गिरामी, जाने गिरामी, यजीद के चाहने वाले आपको कोई, आप, मैं चैलेंज देके कह रहा हूँ, आप किसी ईसाई से कह दीजिए, यहाँ क्रिश्चियंस हैं, अगर वो जानता होगा ना यजीद को, जरा उसे कह के देखिए तू यजीद है, अगर आप पर गिरेबान ना पकड़ ले। पाकिस्तान में सारे हिंदुओं को मौला हुसैन का पता है, यजीद का पता है। आप पाकिस्तान में किसी हिंदू से, इंडिया में भी ऐसे ही होगा, कबीला मुझे बताएंगे, इंडिया में पाकिस्तान में आप किसी हिंदू को कह देंगे ना यजीद, लड़ने लगेगा मुझे गाली क्यों दी है, वो समझ जाएगा ये यजीद गाली है। आप किसी से कह दें हुसैनी, हर आदमी खुश होगा, इसने तारीफ की है, लेकिन सिर्फ मिलेंगे यजीद के मानने वाले तो मुसलमानों में, मुसलमानों में मिलेंगे, कह रहे नहीं यजीद रजी अल्लाह था। एक मुफ्ती साहब ने तो यहां तक मैंने ख्वाब में देखा यजीद को। मुफ्ती साहब कोई नेकी कर लीजिए, ख्वाब में कोई नेक आदमी आ जाए, बुरे लोग भैया मेरे जुमले उर्दू समझ में नहीं, मेरे जुमले पहुंच रहे, मुर्दाबाद, मेरे जुमले समझ में आ रहे हैं? अजाने के रामी, यानी कोई इंसान नेकी करता ना तो नेक रूहें ख्वाब में आती हैं, जब इंसान गुनाह कर लेता तो फिर बदरूह ही आती। तो अजाने के रामी वो कह रहे मैं मुफ्ती साहब बहुत बड़ा नाम नहीं लूंगा, पेट तक दाढ़ी है माशाल्लाह से, जो क्लिप मुझे किसी ने भेजा, कह रहे मैंने ख्वाब में यजीद को देखा, मैंने पूछा अल्लाह ने आपके साथ क्या किया, अल्लाह ने मुझे माफ़ कर दिया। तो मुफ्ती साहब कहने लगे कि ओ मुसलमानों तुम भी यजीद को बख्श दो, कब तक लानतें करते रहोगे? तो जब अल्लाह जवाना ने जन्नत के सरदार का खून यजीद को माफ कर सकता है, तो मुझ सैयद को एक छोटी सी लानत माफ नहीं कर सकता? ये जो सारा पूरा कॉन्सेप्ट यजीद के, मैं जो आज पेश कर रहा हूँ मवारिसुल अंबिया, सारे अंबिया की मीरास अगर देखनी है तो मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को देख, खुदा की कसम अंबिया की मीरास मिलेगी तो हुसैन इब्ने अली के पास। आप करबला जाइए, आपको महसूस होगा कि आपने सारे अंबिया की ज़ियारत, वल्लाह कामिल ज़ियारत में रिवायत है कि मन ज़ारल हुसैन अब करबला का मन ज़ारल्लाह बे अरशे, जिसने हुसैन इब्ने अली की करबला में ज़ियारत की ऐसा है जैसे अरश आज़म पे अल्लाह की ज़ियारत की हो। छठे इमाम की ज़ियारत, ये रिवायत है या नहीं है कामिल ज़ियारत? इतनी रिवायात मौला हुसैन की ज़ियारत पर ताकीद, क्यों ताकीद है? ज़िंदगी में हर कभी यानी हर तीन चार बरस में एक मरतबा ज़ियारत ज़रूर करो। क्यों? इंसान का ईमान कमज़ोर हो जाता है, ज़ियारत हुसैन से ईमान मजबूत होता है। सारे अंबिया के वारिस हुसैन, सारे अंबिया क्यों सलाम करेंगे, ए हुसैन हमने जहमतें की थी बचाई आपने हैं। अजाने गिरामी, ये सारी जहमतें बचाने वाली हस्ती मौला हुसैन है। चलें थोड़ा सा मैं भी आपको आगे लेके चलूंगा। आज मेरे बरादर ने मुझसे कहा कि बहुत से लोग कह रहे थे मौलाना से कुछ जंग पढ़ दें, कुछ पढ़ें, अब मैंने मौजू लिया हुआ है, उसमें जंग को दाखिल करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन शायद एक दो लफ्ज़ में अगर पढ़ दूंगा तो साथ रहिएगा। वह आते तो मवारिसुल अंबिया व जअलता हुज्जतन अला खल्क़िक, ये अल्फाज बहुत गहरे हैं। मौला क्या फरमा रहे हैं? परवरदिगारा तूने हुसैन को अपनी हुज्जत करार दिया अपनी सारी खल्क पे, नहीं पहुंचा सका। हुज्जतुल्लाह है कौन? हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम। किस पे? खल्के खुदा पे, खल्क मखलूक क्रिएचर्स, सारी मखलूकात पे। मैं पहुंचा नहीं पा रहा ये जुमला, मैं हाथ जोड़ के दरखास्त करूं मेरे जुमले पे गौर कीजिएगा। ये नहीं फरमाया अलन नास, लोगों पे हुज्जत, ये नहीं फरमाया इंसानों पे हुज्जत है, नहीं अभी भी मजमा का हुज्जत, तेरी हुज्जत है अला खल्के, तेरी सारी खल्क पे, सारी मखलूकात पे, ये जानवर, ये चरिंद, ये परिंद, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, सारे खल्क हैं, सारी मखलूकात पे हुसैन हुज्जत है। अजाने के रामी, ये छठे इमाम के अल्फाज हैं, अली रज़ा रिज़वी तो नहीं कह रहा कि आप शक की निगाह से सुन लेंगे, छठे इमाम फरमा रहे हैं सॉरी।